सेव बल नास्तिक बुद्धि हेच्चे गुरुवन्ननु श्रद्धयु पोये भक्तिकिन् स्वस्ति सनातन प्रभकु स्वस्ति वहिंचे।